0: Inner Voice, Discord, Adnan Radio.
1: मगर वो जवाब भी कविता में होना चाहिए
2: भाई, ये तो तुम्हारी ज्यादती है। खैर हाँ, वो सवाल तो बताओ।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Ascot Agnail Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: Niscott Agnel Radio.
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: Scott Agnell Radio.

0: स्कॉट एग्नेल रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो।
2: मैं हूं एनोश।
3: और मैं हूं जेफरी।
2: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
3: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
2: एवरग्रीन सॉन्ग्स? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
3: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
2: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: ओ जेफरी, आज रेड शर्ट कैसे पहन के आया? तेरे पीछे कोई सांड नहीं पड़ा क्या?
1: अच्छा, तू खुद पीली पैंट पहन के आ सकता है और मैं रेड शर्ट पहनू तो तुझे दिक्कत है?
0: यार पीले कलर में क्या दिक्कत है भाई?
1: दिक्कत? पीली पैंट पहन के पीला कद्दू लग रहा है।
0: अबे यार तू उससे लड़ता क्यों रहता है भाई, चल गाने सुनते हैं ना।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता जेफ्री, तू आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए हैं, गाने, समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
0: हमें काले हैं।

0: अच्छा अनुष, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हूँ, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे ऐसे लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह क्या गाना था। अच्छा अनुष ये बताओ ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये सातवीं आठवीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं 1970 से शुरू हो गया था। इसका एग्जाम्पल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: हाय तेरी जुल्फें भाई साहब, क्या लग रहा है?
1: अबे तुझे क्या हो गया?
0: तेरी जुल्फें देख भाई, क्या मस्त लग रही हैं।
1: दूर हट मुझसे।
0: अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो यार गाने की बात कर रहा हूँ। गाना सुन, बहुत प्यारा है भाई, जुल्फों वाली जाने जहाँ।

0: क्या मेलेडी थी गाने की, मजा आ गया।
1: अच्छा अब ये बता नोश, तू मोहम्मद रफी साहब को जानता है?
0: हाँ भाई, कौन नहीं जानता, मेरे तो वन ऑफ दी फेवरेट्स में से एक है।
1: अरे उनका एक सॉन्ग है जिसने तहलका मचा दिया था।
0: कौन सा?
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए।
0: बजा दे फिर।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो,

0: अरे यार जेफरी, आज पता बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ।
1: क्या हुआ?
0: मैं रास्ते में आ रहा था कॉलेज के लिए और मेरा बैग फट गया।
1: अरे आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ।
0: क्या हुआ तेरे साथ?
1: मैं आ रहा था और मेरी जीन्स फट गई।
0: अरे बाकी सारी चीज़ें तो टूटती फूटती रहती हैं यार, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा अमर रहती है, वो है प्यार।

0: आज जेफरी का मूड बहुत ही अच्छा।
1: अच्छा तो फिर इसी बात पे गिफ्ट दे।
0: ओह क्या छोटी बात कर दी तूने आज। ये ले भाई तू चॉकलेट ले।
1: भाई मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब कोई हद से ज्यादा प्यार दिखाता है ना, समझ लो पक्का कुछ ना कुछ

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।

देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्कशेक। मजेदार क्रीमी मिल्कशेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें।

0: आप जो भी बताएं।
1: नादिर, मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है, और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है,

0: लिया, पनीर समोसा खा लिया, लेकिन चॉकलेट समोसा आपको नहीं लगता ये डिजास्टर है?
1: अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे बस ये समोसा खा के। आपने कब ट्राई किया था और आपको किसने सजेस्ट किया इसके बारे में?
0: मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग ऐसे घूमने निकले थे एक दिन, वहाँ पे वैरायटी समोसे पे हमने मेन्यू चेक करा तो उसमें एक नई चीज ऐड हुई थी और ऊपर से इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर एस्टिक बनाया हुआ था चॉकलेट समोसे के नाम का। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या नई चीज आई है, चलो ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करा, खा लिया, लेकिन

0: हूँ आपका दोस्त और होस्ट स्नाडन पिंटो साइनिंग ऑफ।
1: मंजिले अनलिमिटेड।

मिसाले यारी, नफरतों को छोड़ परे अच्छा एक परिवार मिला। नफरतों को छोड़ परे अच्छा एक परिवार मिला, किस्मत ने फिर साथ दिया, भरोसेमंद एक यार मिला। जरूरत के वक्त आज तलक हर बार उसका साथ मिला। जरूरत के वक्त आज तलक हर बार उसका साथ मिला। अगर जिंदगी से मायूस हो जाऊं, आंसू पोंछता एक हाथ मिला। कभी पैसे कम पड़ जाते तो भरपूर मौज कराते मेरी। कभी पैसे कम पड़ जाते

उन पर खेला करते थे। छोटी से छोटी बातों पर भी हम बच्चों जैसे लड़ा करते थे। आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा, इतना प्यार करते हैं ये मुझसे। अगर एग्जाम का कोई क्वेश्चन छूट जाए उसका जवाब फिर मांगते हैं मुझसे। न जाने क्यों ऊपर वाला सबकी तकदीर कुछ यूं लिखता है, न जाने क्यों ऊपर वाला सबकी तकदीर कुछ यूं लिखता है, लोगों को कुछ दिनों के लिए मिलाकर उन्हें एक दूसरे से दूर कर देता है।

ऐ जिंदगी कहाँ ले आई तू मुझे, इस भीड़ में हसीन पलों की तलाश में। पीछे मुड़कर देखा तो दूर खड़े अपने अतीत के वजूद को हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते देखा। ऐसा लगता मानो मेरा अपना अतीत, अपना वजूद मुझसे रूठ गया है, बोझ से दबकर अंधकार में कहीं छिप गया है। लगता है मानो कीमती दौर को मैं पीछे छोड़ आया, सिर पर है सारे बोझ को मैं ढो आया। ऐ जिंदगी बता कहाँ ले आई तू मुझे।

सपनों की सुंदर बगिया में तूने ही घुमाया, हाल बेहाल कर आज तूने ही ठुकराया। आसमां का सीना चीर कर ऊंची उड़ान भरना तूने ही सिखलाया। सैलाबों आंधियों का धैर्य से सामना करना तूने ही बतलाया। दर बदर भटक कर पैरों में अब छाले हो गए, उज्जवल भविष्य के सारे रास्ते ही बंद हो गए। ऐ जिंदगी बता कहाँ

भाई बहन माता पिता का ताज सिर पर पहनाया, आज तूने ही मुझे उन्हीं के लिए तरसाया। घूम घाम कर शाम को माँ की आंचल में सुलाया, अरे ओ जिंदगी तूने आज उसी माँ के प्यार के लिए तरसाया। क्या कहूँ ऐ जिंदगी अब तू ही बता मुझे, कैसा रहा मेरा जीवन जरा एहसास तो करा मुझे। ऐ जिंदगी बता कहाँ ले आई तू मुझे।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेलविन, होस्ट ऑफ द डे फ्रॉम द इनर वॉइस। माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबडी नोज द ट्रूथ एंड एवरीबडी वांट्स टू नो द ट्रूथ बिकॉज द जस्टिस लाइज इन द ट्रूथ। लाइकवाइज वी बिकम्स जजमेंटल इन सर्टन टाइम्स ऑफ द सर्टन टाइम्स इन आवर लाइव्स, बट whether we should be truth or whether we should be judgmental, let's know what kind of truth that lies in the message of the day. My dear friends, everyone has a story in life and everybody exists with a reason to fulfill their destiny and to reach out the destiny. Likewise,

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। उस जगह पर तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पे पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे, उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई के पीछे किसका योगदान है? आपने कैसे इतनी सारी पढ़ाई की? क्या आपके पिता आपको मदद करते थे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उन्हें कहा, नहीं, मेरे पापा जो हैं वो तो पहले ही गुजर गए हैं, ये मेरे माँ का योगदान है। मेरी माँ कई जगहों पर जाकर बर्तन माँजा करती थी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे पढ़ाई करने के लिए मदद की। बॉस ने इसकी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे। तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे, तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
2: In a voice, radio.
1: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो केवल और केवल मेरी माँ के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं, उसके पीछे मेरे माँ का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की कदर है। प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है। हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं। जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है, वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं जहां पर समय को केवल पैसों में तोला जाता है। समय पैसों में तोलने की चीज नहीं है, समय रिश्तों और प्रेम के तराजू में तोलने की चीज है। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
0: इंडिया दिल से।

इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध चल। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: दिल से।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकया यहाँ पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की, कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लगे और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है, वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
2: Inner Voice Radio।
1: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकया है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है, हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। हमारे इंटेंशन का शुद्धिकरण हमारे आचारों के, हमारे एक्शंस के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। तो देखिए, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे शब्द शुद्ध होंगे, और शब्द शुद्ध होंगे तो आगे चलकर हमारे आचार यानी हमारे कार्यकलाप, हमारे एक्शंस भी शुद्ध होंगे। सो देयर आर थ्री स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस। और जब हमारे एक्शंस प्योर हो जाएंगे तो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे, और वहां पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सके। तो ये थी दास्तानें मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को। बाय बाय।
2: इंडिया दिल से।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

0: Scott Agnell Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते।
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Scott Agnell Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: Miskot Agnel Radio.
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आ

0: सोमवार है,
1: है, है।
0: आज सोमवार है,
1: अरे बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: Agnell Radio.